अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों,

0: ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है,

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: श्रोता बंधु, आपण मैंने शुणुले हमर प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक प्रसारित होउछि 100.4 मेगाहर्ज जुगे आज बुधवार 1948 शताब्द आषाढ़ तीन दिन इंग्राजी जून 24 तारीख 2026 मसीहा। श्रोताबंधु स्टूडियो घंटे समय वर्तमान सकाळ 5:58 बजे 58 मिनिट 41 सेकेंड आमर अगणित श्रोताबंधु मानू शुभ सकाळ शुभेच्छा एवं अभिवादन जणाई आरंभ करुछु आज दिनर प्रथम अधिवेशन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली।

तन्मय हे विदुर शुणुचंते। एकादश रुद्रंकर उत्पत्ति, नील लोहितंकर महत्व, रुद्राणी मानंकर आविर्भाव, धर्म अधर्मर उत्पत्ति, किपरि पूर्व मुखरु ऋग्वेद, दक्षिण मुखरु यजुर्वेद, पश्चिम मुखरु सामवेद, उत्तर मुखरु अथर्ववेद प्रकाश हेला, ता सांगको सृष्टि हेले गायत्री आदि सप्तछंद, सृष्टि हेले पृथ्वीर प्रथम पुरुष मनु आउ प्रथम नारी सतरूपा।

सदी वेलकम बैक टू करिश्चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो आपको हुजंती दिल से दिल तक वर्तमान आपण मानक सहित आमे दिन सारा जो कनेक्ट हेकि रहिबु दिल से दिल तक रही जो कनेक्शन ये जो स्ट्रांग हेकि रहिबो सुरीला हेकि रहिबो म्यूजिकल हेकि रहिबो ता सहित जोड़ी हेकि रही छि कौन कौन सब प्रोग्राम्स ता विषय आपण मानक टिके जणैबार समय हे जाइ छि तबे सकाळ 7:10 रे आज सुनिबे आमर

0: गठन पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी युवपीढ़ी को आह्वान देखते भुवनेश्वर जयदेव भवन आयोजित डॉ श्यामा प्रसाद मुखार्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम में जोगद श्री माझी देश और राज्य को दुर्बल कर दुर्नीतिग्रस्त शक्ति प्रति सतर्क रहान देखते केन्द्र सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राष्ट्रमंत्री रामदास अठावाले आज ओडिशा गस्तरे आसिबे। एही अवसर में श्री अठावाले वरिष्ठ अधिकारी विभागीय कार्यक्रम और योजना संपर्क में समीक्षा करिबे। परे भुवनेश्वरस्थित राज्य अतिथि भवन में एक सांबादिक सम्मेलन में जोगदेबे। राज्यर विभिन्न स्थान में कार्यकारी होता सड़क संप्रसारण प्रकल्प को त्वरान्वित करने एककालीन यूटिलिटी स्थानांतर कार्यपाई शक्ति और पूर्त विभाग मध्य समन्वय सुनिश्चित करने लक्ष्य उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव और पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एक मिलित बैठक अनुष्ठित निर्धारित समय मध्य प्रकल्प संपूर्ण करने को शक्ति और पूर्त विभाग अधिकारी श्री सिंहदेव निर्देश देते। उभय विभाग सुरक्षा वैधानिक अनुपालन एवं कार्यर गुणवत्ता अपरिवर्तित रखी सुगम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को बैठक में गुरुत्वारोप करा। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन अध्यक्षतार स्वीकृतिप्राप्त राजनीतिक दलगुड़िकर प्रतिनिधि भोटर तालिका स्वतंत्र सघन संशोधन संपर्कित एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित एक संपूर्ण सठिक भोटर तालिका प्रस्तुत करने बैठक में गुरुत्वारोप प्रक्रिय कौन योग्य मतदाता बाद न पड़ा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन मंडल में बहुस्तरीय अधिकारी और एजेंट मध्य एक समन्वय बैठक आज और आसंका अनुष्ठित बैठक में निष्पत्ति एथिसह आसंता पांच तारीख में प्रकाश पाइबा चिट्ठा भोटर तालिका एवं एही संशोधन प्रक्रिया परवर्ती पर्यायगुड़िकर सुपरिचालना नहीं आलोचना होई। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी आज पुण्यतिथि राज्यवासी श्रद्धांजलि अर्पण कर विधानसभा परिसर में प्रतिमूर्ति में मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बाचस्पति और मंत्रिमंडल सदस्य तथा विधायक पुष्पमाल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। स्वर्गत चौधरी एकाधारे जन स्वाधीनता संग्रामी समाजवादी तथा सर्वोदय नेता भाव समग्र देश में परिचित थे। राज्य में निशाद्रव्य कारबार नियंत्रण निशामुक्त समाज गठन पर जनसचेतनता सृष्टि तथा निशा कारबार को रोकने विभिन्न संस्था मध्यम समन्वय को अधिक सुदृढ़ करने लगी भुवनेश्वरस्थित लोकसेवा भवन में मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अध्यक्षत एक बैठक अनुष्ठित राज्यस्तरीय नार्को समन्वय केन्द्र सप्तम बैठक में श्रीमती गर्ग निशाद्रव्य नियंत्रण क्षेत्र में विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करने को निर्देश देते। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा सुपरिचालना नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार द्वितीय समन्वय कमिटी बैठक अनुष्ठित अपरपक्ष पुरी में रथ निर्माण कार्य सुरखुरी आगे चली समय गतकाली तीन रथर प्रभा निर्माण शेष हो रूपकार तीन रथर चौबीस नाटगोड़ कंदर्प रूप खोद शेष कर। भद्रक जिले भोटर तालिका स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रिया जारी रही जिलार 99% मतदाता परिगणना फर्म बंटन और संग्रह करा प्रशासन पक्ष वर्तमान सुधा 11,51,985 फर्म डिजिटाइजेशन कार्य शेष हो। सुवर्णपुर जिला प्रशासन और श्रम विभाग पक्ष शिशु श्रमिक उद्धार अभियान करा विभिन्न होटल ग्यारेज दुकान 6 जन किशोर श्रमिकों उद्धार कर शिशुमंगल कमिटी को हस्तांतर कर। नवरंगपुर पुलिस पड़िया ब्लॉकस्तरीय स्वावलंबी युवा समृद्ध ओडिशा समावेश अनुष्ठित कार्यक्रम में युवपीढ़ी कार्यकारी होता विभिन्न सरकारी योजना और निजुक्ति सुजोग संपर्क में अधिकारी सूचना प्रदान करते। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम आज 65तम जातीय अंतराज्य वरिष्ठ दौड़कूद प्रतियोगिता 2026 आरंभ हो 28 तारीख पर्यंत चलता एक प्रतियोगिता 27 राज्य केन्द्रशासित अंचल प्राय 630 जन खेला भाग ने मोट 45 वर्ग में प्रतियोगिता हो। पाणिपाग दक्षिण पश्चिम मौसुमीवायु संपूर्ण ओडिशा को स्पर्श करिछि। पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 5 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा होने संभावना रही। आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा होने प्राय समस्त जिला को सतर्क सूचना जारी कर। आंचलिक संवाद वर्तमान पर परवर्ती आंचलिक संवाद सुनिपारे अपराह 2:32 मिनिट।
1: साथी एवं आसतु शुणा आम स्वास्थ्य आमर स्वास्थ्य आज आंटीबायोटिक व्यवहार सतर्कता ए विषय आलोचना कर डाक्टर रवि नारायण रथ।
2: ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜୀବୀ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର

सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद

0: साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो

0: अन्य 10 हमारे जहाज हैं, वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की

कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

0: और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address

0: वेलकम बैक टू गरिचंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक कहुचंदी दिल से दिल तक स्टूडियो घंटार समय वर्तमान 8:30 वर्तमान समय आपण मानकर सही प्रतीक्षित कार्यक्रम माने यस आरंभ करबा को जाउछु कार्यक्रम मो पसंद आसुंद शुणिबा मो पसंद
1: हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु आपनकर साथी जैस्मिन स्वागत करूची आपनकर आमर आम समस्तंकर प्रिय प्रोग्राम को जानु ना हला मो पसंद ओनली ऑन एआईआर एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे
2: शुभ सकाळर शुभेच्छा शुभकामना आउ नमस्कार सहित मु नमिता आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे
1: सकाळर तुमे सुनिले किरण रात्रि जह्नर ज्योत्स्ना पाहंती स्वप्ने तुमे मो प्रेमिक मध्यान्हरे मोर तृष्णा

0: हेलो मोपसंद केक हो चंदी।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया हैं।
0: क्या कर रहे हैं आप?
1: जी दीदी अभी तो घर पर हैं क्योंकि हमारा जरा अभी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है दीदी।
0: अच्छा, भगवान सिंह जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी।
0: आप क्या करते हैं काम?
1: खेती किसानी करते हैं दीदी।
0: अब क्या लगाए हैं आप खेत में?
1: जी अभी दीदी मूंग बोए हैं और अभी खेत कुछ तो खाली पड़े हैं दीदी, तो उनको हकाई जुताई चल रही है दीदी उनकी।
0: अच्छा, पानी की सुविधा है वहाँ पे?
1: जी हाँ दीदी, पानी की सुविधा है, पर्याप्त पानी है हमारे पास।
0: तो गर्मी के दिनों में क्या सब खान पान हो रहा है आपका?
1: जी कुछ नहीं दीदी, हम कभी सभी तो जूस पी लेते हैं आम का, ठंडाई वगैरह खा पी लेते हैं, तो ऐसे ही गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं दीदी।
0: गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं,
2: ये तो सब लोग सीखेंगे।
1: हमें ना तीनों मौसम को एंजॉय करते हैं, बारिश को भी और जो ठंड पड़ता है उसको भी और गर्मी को भी दीदी। हर मौसम की एक विशेषता रहती है दीदी, और खाने पीने में भी हर मौसम का एक अलग ही वो रहता है दीदी। मौसम के हिसाब से फल फ्रूट मिलते हैं दीदी, तो वो हर मौसम को हर पल हर हिसाब से जीना पड़ता है दीदी।
0: इसका मतलब ये पता चल रहा है कि आप आम बहुत खा रहे हैं।
1: जी हाँ दीदी, हमारे घर पर ही आम है दीदी।
0: हाँ?
1: और हमने काफी वैरायटी को बो रखा है, तो दीदी अभी पकने वाले हैं और हम कच्चे आमों को तोड़कर पका भी लेते हैं।
0: अच्छा, कौन से वैरायटी के आम हैं आपके बगीचे में?
1: दीदी तीन चार तरीके हैं, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं मालूम क्योंकि बहुत पहले लगाया था दीदी, तो अब उनका नाम मुझे मालूम नहीं कौन से आम है।
2: वो जो आप बोले हैं ना एंजॉय कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब क्या क्या कर रहे हैं आजकल?
1: जी दीदी घर पर ही दे रहे हैं और सुबह 10 बजे के बाद काम नहीं करते, शाम को 3 बजे के बाद काम करने जाते हैं और जो समय बचता है उसमें घर पर ही रहते हैं दीदी।
2: आजकल क्या काम कर रहे हैं?
1: थोड़ा बहुत खेत पे काम रहता है, खेतों की हकाई जुताई है, मवेशियों का वेदना रहता है और उनको पानी पिलाना, सांदी बकरा करना, ऐसा रहता है दीदी।
2: घर में कौन कौन है?
1: जी माता पिता है, बच्चे हैं, भाई है, सब है दीदी।
0: सब है? कितने गाय और भैंसे हैं आपके पास?
1: दीदी 4 गाय हैं हमारे पास, भैंस नहीं है।
0: सिर्फ गाय
1: जी?
0: दूध का बिजनेस भी करते हैं?
1: जी हाँ दीदी करते हैं ना दूध का बिजनेस, हम अपने गांव की डेयरी जो सरकारी डेयरी है
0: जी
1: उस पे दूध देने जाते हैं।
0: आपके वहाँ पर लीटर कितना चल रहा है?
1: हमारा दूध तो जाता है 40 रुपए लीटर, लेकिन जो डेयरी पे से खाने के लिए लोग मतलब जो जनता ले जाती है उसको 50 रुपए लीटर देते हैं।
0: अरे बाप।
1: जी आपके यहाँ क्या चल रहा है दीदी?
0: वही चल रहा है।
1: हमारे इधर है ना डेयरी में से जो दूध खाने के लिए ले जाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध रहता है, कोई मिलावट वाला दूध नहीं रहता है।
2: आपकी घरवाली उनके नाम क्या है?
1: उसका नाम है नीतू परमार।
2: वो क्या करते हैं?
1: वो घर का करते
0: हैं। आज क्या बनाई है आपकी पत्नी जी ने?
1: जी खाने में चावल बनाए थे, वो राइस जो बोलते हैं ना।
0: जी जी।
1: और सब्जी रोटी, हमारे इधर गेहूं की रोटी बनाई जाती है दीदी।
2: चावल तो हम रोज खाते हैं,
0: रोटी भी खाते हैं, आप जो खाते हैं हम भी वही खाते हैं
1: जी हमारे यहाँ।

0: साल भर दीदी गेहूं की रोटी खाते जाना था अधिकतर दीदी।
1: हमारे जैसे अधिकतर चावल खाते हैं।
2: तो फिर आपके वहाँ पर गेहूं की खेती ज्यादा होती होगी?
0: जी दीदी, हमारे यहाँ गेहूं की 90% खेती होती है।
1: बहुत बढ़िया।
0: मेन फसल हमारी गेहूं ही है दीदी, और ये गेहूं से हमें बहुत फायदा होता है किसानों को।
1: अच्छा
0: जी,
2: आप जब खेती बाड़ी से फ्री होते हैं तब गाना वाना सुनते हैं या गाते हैं?
0: जी दीदी, गाना गाते तो नहीं, लेकिन गाना हम हमेशा सुनते हैं, क्योंकि मेरा बचपन से रेडियो से लगाव है दीदी। आकाशवाणी पे मैं हमेशा से बचपन से ही दीदी गाने सुन रहा हूँ, तो मैं आज भी रेडियो पे गाना सुनता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं हमारा कार्यक्रम?
0: फिल्म का नाम है जीत, और गाने के बोल है वादों से नहीं यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है, महबूब जो देख ले एक नजर दिल को करार मिलता है।
1: ठीक है, सुना देते हैं आपको ये सुंदर सा गाना।
0: धन्यवाद।
2: फोन किए बात की इसीलिए धन्यवाद।

वेलकम बैक टू इनकर्षण 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक स्टूडियो घंटे वर्तमान हे सारी छि समय 9:00 बजे गोटे मिनिट आओ समय इसरा देखि कहिलेनी आपण मानक सहित डायरेक्ट कनेक्शन रु सिलसिला को वर्तमान करबा को पडिबा आरंभ माने डायल इन लाइव चिटचैट को करबा पई पडिबो एबे आरंभ झापसा अंधार संज नईले मने पड़े से दिन आई कोले सोई सुनुथले कथा हजाई आपणा मन रूपेली डेणाटी हली हली आकाश

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार

वेलकम बैक ट्यून कर चुन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चुन दी दिल से दिल तक आपण मन का सहित आपण मन का फरमाइश को पूर्ण करबा पई रेडी हो जाई छी आपण को म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत कारण रेडियो घंटा रही जाई छी 10टा रेडियो सफर करे आपण माने समस्त उठंतु निजरो फोन आ एसएमएस बॉक्स को जाई की टाइप कर दियंतु एफएमआरसी लिखी की को गीत सुनबा पई चाहंती आपण एवं कहा को डेडिकेट करबा पई चाहंती को चलचित्र को एल्बम टिटू से गीत टी आसु छी एवं सेसेरे पठि दियंतु हम नंबर 0949596321 जदि करबा पई चाहंते हमकु व्हाट्सएप तबे नंबर होची 8895254200 आपण माने व्हाट्सएप माध्यम रे मध्ये आपणकर अनुरोध रे गीत हमकु पठे परिबे तबे वर्तमान जे अनुरोध रे गीत हमकु पठी सारी चंती से होचंती प्रथम मेसेज टी आमसची जाजपुर रोड धवलगिरी रु ओएमसी कॉलोनी रु तंद्राणी पलार सुनिबा पई चाहिचंती कसूर चलचित्र रो गुटे ब्यूटीफुल ट्रैक कितनी बेचैन होके तुमसे मिली ए ब्यूटीफुल ट्रैक टी सुनिबा पई चाहिचंती निश्चित भाव रे प्ले कर दबा एवं ता परे परे आउ गुटे गीत रो अनुरोध नरगुड़ा छत्तीसगढ़ रु महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीन देवन गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दीसा गोस्वामी सुनना चाहते हैं प्यार का मौसम ये फिल्म से एक प्यारा सा गाना और डेडिकेट कर रहे हैं सारे लिसनर्स को जय जगन्नाथ लिखे हैं और लिखे हैं दिल से दिल तक जरूर आपका ये फरमाइश हम पूरा कर देंगे आपके फेवरेट स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक में बैक टू बैक इधर ब्यूटीफुल ट्रैक अपन मान को पाई स्टे ट्यून्ड

वेलकम बैक अगेन, ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम ब्रेनबर्ग कहते दिल से दिल तक। नेक्स्ट मेसेज आमको करी कंठल आठगढ़ कैलाश बेहरा और कामिनी बेहरा लिखुं नमस्कार भाई, आज डालीन टॉपिक बहुत सुंदर थिला, बहुत भल लगला, फोन करने को इच्छा थिला हेले जमा भी कॉल लगलानी से दुखित। निश्चित भाव अनुरोध रीत असी नसीब चलचित्र जिंदगी इम्तिहान लेती है, निश्चित भाव प्ले कर दूसरे आप मन पसंद रीत।

गुड मॉर्निंग जनाइछन्ती स्पेशली डेडिकेट करछन्ती कोयल मैडम मुन्ना पंडा राजेश नायक गरीब खान एंड बासंती खटुआ भुवनेश्वर को निश्चित भाव आपण मानक अनुरोध रे बैक टू बैक दुईटी गीता

0: चैन हो मेरे दिल का, सिर्फ तुम सिर्फ
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर चुनते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को। किस समय बुरबुरु आमे कथा उठले बॉलीवुड अभिनेत्री भूमिका चावला को विषय रे। तबे भूमिका चावला 21 अगस्त 1978 रे न्यू दिल्ली रे एक मिलिटरी फैमिली रे जन्म नहीं थले। दिल्ली रे निज पाठ पढ़ा सारिबा परे से निज अभिनय जीवन आरंभ करबा पई 1997 रे मुंबई आसंती। मुंबई आसिबा परे मॉडलिंग करिबा परे धीरे धीरे तांकु विभिन्न विज्ञापन एवं म्यूजिक वीडियो पई ऑफर आसीथला। 3 वर्ष एहि सब करिबा परे ईयर 2000 रे तांकु बड़ परदारे सुजोग मिलिथला। तेलुगु फिल्म युवा कुडु जरिया रे से अभिनय जीवन आरंभ करथिले। यहाँ परे 2001 रे पवन कल्याण का सह फिल्म खुशी बॉक्स ऑफिस रे बड़ सफलता पाई थला, जोंति पई तांकु श्रेष्ठ अभिनेत्री भाव रे फिल्म फेयर अवार्ड मध्य मिले।

2003 मसीहारे सलमान खानक लोकप्रिय सिनेमा तेरे नाम रे सुजोग पांती बॉलीवुड रे भूमिका चावला ए चलचित्र रे सुपरस्टार सलमान का सह तंक केमिस्ट्री एवं इनोसेंट कैरेक्टर निर्जरा को लोके खूब पसंद करथिले। ए फिल्म टी ब्लॉकबस्टर होइथिला एवं समस्तक प्रशंसा मध्य साउंटीथिले भूमिका चावला। या परे अनेक फिल्म जेमिति की बॉलीवुड फैंस मानको से भेट दैछंती। चलचित्र गुडी का रन दिलले किसे अपना कहा सिलसिले गांधी माय फादर भली अनेक हिट फिल्म से दे सारी छंती निजा फैंस मानको।

बंधु ट्यून करिछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक डीपी माने देवी प्रसाद अछि आपनको सहित टाइम एबे घंटा रे 12:00 क्लॉक

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर छथि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को मु अछि अपन को सहित डीपी सो चली छि किछि कथा किछि गीता किस समय पूर्व रु मु अपन को कहुतिली स्मृति जेबे संपर्क सहित जुड़ी ही जाय ना साथी सेते बेले जीवन बहुत सुंदर हो जाए। संपर्क जेबे हृदय रही थाए सेठी स्वार्थ न थाए केवल अनाबिल स्नेह आदर आ परस्पर प्रति

फ्रेंड्स वेलकम बैक टू उनकर छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को डीपीएच आपनको सहित सो चली छी किछि कथा किछि गीत आज किछि कथा किछि गीत रे हमें कथा हो छे कि मीठा स्मृति केमिति मीठा संपर्क रु सृष्टि हुए तबे साथी आपनकर मन थिबो पिलाटी दिन रु बापा मांक सहित बिताई थिबा सेही सब समय हमरो सबबेले मने पड़े कहीं कि ना जेतेबेले आमे बड़ हो जाऊ सेतेबेले निज निज काम रे व्यस्त हो जाऊ आउ बापा मांक ठारु टिके दूर को आसीबा पई पड़े कहीं कि ना सेही समय रे आमको आम करियर प्रति मध्ये ध्यान देबाको पड़िथाय तेनकरी बाध्य हो आमे बापा मांक ठु दूरी जाई थाउ पिलाटी दिन रु बापा मांक निस्वार्थ पर भल पाइबा भाई भौणी क सेही स्नेह भरा झगड़ा आ पुणी थरे एकाठी जीवा जीवन साथी सह सुख दुख बांटिबा ये सब छोट छोट जिनिस जेतेबेले जीवन रे

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया।

पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर

0: पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहाध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहाध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबुधाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के पांच

0: स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से इस पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले

0: के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती जितेंद्र कुमार नायक। मुख्य संवाद, सामुद्रिक वाणिज्यर सुरक्षा व्यापक प्रगतिर प्रवेशपथ कहिले मुख्यमंत्री। 14तम मल्टी एजेंसी सामुद्रिक सुरक्षा ग्रुप नीति बैठक को कले उद्घाटन। केन्द्र सरकार जनकल्याणकारी योजनार सफलता संपर्क में भुवनेश्वर सांबादिक सम्मेलन में तथ्य रखिले केन्द्रमंत्री रामदास अठावले। स्वयं सहायक गोष्ठी को 147 कोटी ऊर्ध्व टंकार सुध फेरस्त कले राज्य सरकार। एवं कलिंग स्टेडियम ठारे आज आरंभ हला अंतरराज्य वरिष्ठ दौड़कूद प्रतियोगिता। भारत आज विश्व एक प्रमुख सामुद्रिक शक्ति भाव उभा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मेलनी कक्षे 14तम मल्टी एजेंसी सामुद्रिक सुरक्षा ग्रुप नीति बैठक उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहते सामुद्रिक वाणिज्य और यार सुरक्षा व्यापक प्रगतिर प्रवेशपथ। समुद्र बंदर मत्स्य संपद एवं नील अर्थनीति हेउची गुरुत्वपूर्ण जातीय संपत्ति। यार सुरक्षा आर्थिक विकास और समुद्र उपर निर्भर करथवा लक्ष लक्ष उपकूलवासी जीविकार कल्याण पर अत्यंत जरूरी। वर्तमान समय सामुद्रिक सुरक्षा आईन श्रृंखला मध्य सीमित नहीं बोली श्री माझी कहते।
1: आज समुद्री सुरक्षा पारंपरिक आईन व्यवस्था की चुनौतियां से कहीं आज तक संप्रसारित हुई है। इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, साइबर रेजिलियंस, पर्यावरण की सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, समुद्री संसाधनों का उपयोग और तटीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी शामिल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करना आज का दिन में बहुत जरूरी है। इससे हम एक समन्वित और एकीकृत दृष्टिकोण का विकास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। समुद्री परिदृश्य में ओडिशा का एक अनोखा स्थान है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ओडिशार सामुद्रिक इतिहास संपर्क में आलोकपात कर भारतर सामुद्रिक विकास गाथा राज्यर प्रमुख भूमिका रही। ओडिशार सामुद्रिक रणनीति को आहरी मजबूत करने गंजाम ठारे एक गभीर समुद्र बंदर एवं पारादीप निकटने एक सीप बिल्डिंग क्लस्टर निर्माण केन्द्र सरकार सागर आक्ट ईस्ट पॉलिसी, बिमस्टेक आदि प्रगतिशील नीति को राज्य सरकार संपूर्ण समर्थन करुछन्ते। माछधरा डंगागुड़िकरे नवमित्र ट्रांसपंडर संजोग एवं उपकूलवर्ती ग्रामर उन्नति आदि कार्यक्रम सामुद्रिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने दिगरे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली मुख्यमंत्री कहते। कार्यक्रम में जातीय मैरिटाइम सुरक्षा समन्वयकारी अवसरप्राप्त वाइस एडमिराल विश्वजित दासगुप्ता जोगदे सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्र में विभिन्न मॉडल और रणनीतिक ढांचा उपर गुरुत्वारोप करिथिले। केन्द्र सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राष्ट्रमंत्री रामदास अठावले आज ओडिशा गस्त लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात करते। अवसर में श्री अठावले वरिष्ठ अधिकारी विभाग कार्यक्रम और योजना संपर्क में समीक्षा करते। भुवनेश्वरस्थित राज्य अतिथि भवन एक सांबादिक सम्मेलन में जोगदे श्री अठावले गत 12 वर्ष केन्द्र सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनार सफलता संपर्क में आलोचना कर देश में वर्तमान सुधा 58 कोटी अधिक लोक जनधन आकाउंट रही। सेतिमध्यर ओडिशार 2,40,00,000 अधिक आकाउंट रही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजन 10,00,000 टंकार ऋण सहायता को वर्तमान 30,00,000 टंका को वृद्धि कर योजना अधीन एपर्यंत 3,64,00,000 लोक सहायता प्रदान कर उज्ज्वला योजन ओडिशार 56,47,000 लोक उपकृत होते। तृतीय लिंगिक सुरक्षा एवं सेमानको अधिकार प्रदान दिगरे सरकार एकाधिक निष्पत्ति ग्रहण करिसेंति। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति वर्गर छात्र छात्री संरक्षण और वृत्ति क्षेत्र में

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताब जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और

0: शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्ब सर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्ब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड के फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्ब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्ब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्ब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले

0: जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्म स्थली के रूप में चुना।
0: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीद

0: द्वार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूँ।
0: तो फादर मैं चाहता हूँ कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
4: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
2: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
4: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों

0: में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा।
1: वर्तमान समय धीरे धीरे धीरे धीरे इशारा दौछि डीपी माने देवी प्रसाद को आपन गठु विदाय नबाकु पड़िबो, किंतु मो परे परे रेनबो किंतु चिंता करिवार जमा भी आवश्यकता नहीं, कहीं ना मो परे परे रेनबो साथी नारायण आसुछंती स्टूडियो को आपन को पाखो को रहिबे पूरा संध्या आपन को सहित सुनेबे आपन को ढेर सारा गीत आपन को मनर कथा बुझिबा सहित हव म्यूजिक रा बरसात। तेरे साथी आजी पाई दिल से दिल तक रा कनेक्शन यही पर्यंत पुणी देखा हवा आपण सहित पुणी ढेर सारा कथा हवा ढेर सारा गीत मु आपण को सुनेबी आपण कर मतामत मते मागिबी से पर्यंत डीपी को विदाय दियंतु। से पर्यंत विदाय दबा सहित आपण ट्यून करथान 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक को जाऊ जाऊ सुनि दउछ आपण को ई सुंदर गीतटी मोहम्मद रफी का कंठरे।

फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक हाँ मीठा मीठा गीतरे तो निश्चित भाव आपण मन हजि जाइए आ समय भी आसी जाइए आपण मान पुणी मीठा मीठा गीत भितर आप हजिजापी हाँ बर्तमान समय हूँ सुरिला आफ्टरनून सुरिला आफ्टरनून रीठा मुहूर्त को ये मीठा मध्यान को आपण मान समस्त बहुत बहुत स्वागत आपण एफएम रेनबो र रेनबो साथी नारायण सदी सुरिला आफ्टरनून रो आरंभ हो मोर जनी आउ ए जनी आपण मानक सहित रहइबो राति 11:00 बजे 10 मिनट पर्यंत बहुत किसी मस्ती बहुत किसी एंटरटेनमेंट आउ कथा गीत र समाहार रे एफएम रेनबो रो ए संध्या अधिवेशन हृदय भी स्पंदन हुए हुए कि ना हाँ अरे हृदय तो स्पंदन ही हम स्पंदन टा कौटी हम हृदय से स्पंदन को केवल अनुभव कर खरा बेल हो सका हो कि संध्या किंबा राति सब मुहूर्त किसी ना किसी गोटे स्पंदन रही गोटे फिलिंगस रही आपण भितर हाँ मुँ हुए कि आपण हूँ कि समस्त आम समस्ते समय गोटे निर्दिष्ट टाइम रो जहाँ को आम कहीपर निर्दिष्ट मुहूर्त गोटे स्पंदन को फिल करती सका जो एनर्जी आप अनुभव करती तो मध्यान से एनर्जी आप अनुभव करेंगे ठीक सेमती इवनिंग हेले तार किसी अलग अनुभव आ राति हेले तार भी किसी अलग अनुभव ये अनुभव को नहीं आम जीवन प्रति मुहूर्त आम अनुभव बदले।

सदिटून को छुंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छि वर्तमान सोरिला आफ्टरनून रो चौठी मीठा मीठा गीत आपण मन को पाखरे पहुंची जाउ छि। आउ आज हमें कथा हो छुंती मध्यान्न रो स्पंदन संपर्क रे। स्पंदन जीवन रे बहुत आवश्यक। हां बिना स्पंदन रे आमे जीवन को अनुभव करि पारंतिनि। से सकाळ हो मध्यान्न हो किंबा संध्या हो राति सबु मुहूर्तर किसी ना किसी स्पंदन आमको किसी एनर्जी दे थाए। जो एनर्जी पाई जो शक्ति पाई जो स्ट्रेंथ पाई आमे आगो को चलिबार किसी स्वप्न देखिबार किसी समय रेस्ट नबार से स्पंदन को अनुभव करंती। मध्यान रे जेते बेले गछर छाया छोट हो जाए सेते बेले प्रकृति मध्य एक माने गोटे मुहूर्त पाई नीरव हो जाए। पक्षी माने निडर विश्राम नौ थांती। गांव रास्ता शांत हो जाए आ दूर सुना जाए हल्का पवन स्वर। यह समय मनुष्य मध्य तार दैनंदिन काम मध्य किछि क्षण निज सहित काटिबा को चाहे। कई पुस्तक पढ़ती कई चा कप्रे आराम खोजती तो आउ कई पुराणा स्मृतिर कली रे हजि जानती। मध्यान्न आमको सिखाए जे जीवन दौड़ मध्य भी किसी समय निजपाई रखा निहाती दरकार।

वेलकम ब्याक टु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सारी समय हिची वर्तमान डायलिंग लाइफ चिटचाट कार्यक्रम माने केवल आपण कार्यक्रम जो आपने सीधा सड़क एफएम रेनबो सहित जोड़ी हो पारे तो डेरी कहीं आपण तो मन थी फोन नंबर किंतु फोन नंबर नहीं कौन करेंगे साथी जदि एपर्तंत आपण टॉपिक पहुंची पारि तेज कौन करेंगे ना कौन कहते तेब प्रथम कार्यक्रम को आप बहुत बहुत स्वागत जनइबु आखिबु आज टॉपिक सुंदर टॉपिक आप रही आशा करुचु आप समस्ते जोड़ी हाँ आपण मन भितर गोटे व्यग्रता भरीज आज टॉपिक हूँ आपण पसंद से गोटे सदाबहार एवरग्रीन गीत कौन अच्छी जहाँ शुणिले आपण बहुत खुशी अनुभव करती मन रहा टॉपिक आपण पसंद से गोटे सुंदर सदाबहार एवरग्रीन गीत जहाँ भी कही पारे कौन रही शुणिले आपण बहुत खुशी अनुभव करती अधिकांश समय भी आप गुणगुणी हवा को भल पाती तो फेवरेट गीत आपण कौन अच्छी जहाँ आपण मूड को तुरंत मान पूरा फ्रेश कर दौर कौन सी हालत रे तो आप जोड़ी पारे नंबर हूँ 0671-2303-153 ए नंबर जरिए कहीपर आपण मनर कथा

0: तबे देखिबा प्रथम कलर के अछंती आम सहित हेलो
1: गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह और शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाओ मैं उसका नाम।

0: दरसान पर तुम्हें लिख नहीं पाओ मैं उसका नाम। जय जगन्नाथ, नमस्कार।
1: बहुत बढ़िया आपण गाइले
0: भाई, धन्यवाद।
1: आपण को परिचय टिके दियंतु।
0: मो होची रेडियो लवर नारायण प्रधान, बी बरमपुर, बुगुड़ा जिला गंजाम।
1: क्या बात है, आउ को फिल्म रे आपण कहि परबे कि तटी?
0: रामपुर का लखन।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए गीतटा माने आपण को सबळे भल लागे?
0: आज्ञा, मो गीतरा पूरा सबळे मते भल लागे एतरा को।
1: तथापि आपण कर जो एसएमएस आसे माने जो कार्यक्रम आउ जो एसएमएस रो प्रोग्राम सेतरे आपण को बहुत बढ़िया बढ़िया गीत भी आपण माने चाहंती सुनिबा को मने अछि आपण को सब फेवरेट गीत गुड़िक। तबे ए गीतटी आपण को बेसी भल लागे केते केबेठो आपण गीत सुनले छोट बेलु?
0: आज्ञा हो, मैंने छोट बड़ी सब पुराणा गीत सब बहुत भल लगे, जिनकी मैंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लताश जी, मुकेश जी, आंकर गीत मुझे सब बहुत मानते मुझे परमाश करे रेनबो हो कि विद्यार्थ हो कि कटकेन्द्र मुझे सब गीत परमाश करते हैं।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा केते बले माने मूड खराब थले गीत सुनेव को अपन भल लगे ना एमिति सब बले जते बले मने पडुथबो से गीत को गाउथबे?
0: ना मु त प्राय बेसी समय गीत सब गुनगुने से बहुत समय।
1: बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद एफएम रेनबो से जोड़ी थवारो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार साथी, आपण मने भी कहि परिबे, नंबर होची 0671-230-3153। हमरो प्रश्नित आपण जानिछंती आपणकर पसंदर सेई गोटे सदाबहार एवरग्रीन गीत कौन जहां सुनिले आपण बहुत खुशी अनुभव करंती, आपणकर मूड एकदम फ्रेश हो जाए। तो आउ जने कलर अछंती कि अछंती देखिबा। हेलो
2: भाई नमस्कार, मु रमेश चंद्र साहू औकमा भापुर ढेकान कहतले।
1: रमेश भाई कार्यक्रम को स्वागत आपणको।
2: आपणको भी
1: कौन कहिबे आज टॉपिक संपर्क करे?
2: भाई मते सब तो पुराना गीत भल लगे, नुआ गीत भी बहुत भल लगे, आउ एल्बम गीत चार्ट भी आरो भल लगे, आउ जते सब पुराना गीत को बहुत भल लगे, हिंदी हो उड़िया को मते के बहुत भल लगे।
1: बहुत भल लगे ना
2: नारायण भाई कहतले तांकर पुराना गीत मोरी पुराना गीत कारण से समय श्रोता भी आमे।
1: अच्छा,
2: तेणु मोर गोटे गीत अच्छी तेरे बिना जिंदगी से कोई तो नहीं नहीं। किशोर कुमार गीत।

0: सधैँ पुनःथरी आपणमानंकु स्वागत आजिर डायलिन लाइव चिटचाट कार्यक्रमको। आज आपणमाने पई टॉपिक रहिछि आपणंकर पसंदर एमिति गोटे सदाबहार एवरग्रीन गीत कौन अछि जहाँ आपणंकु अनेक समय खुशी देइथाय बा आपण गाइबाकु भल पांती। तो आम सहित जोड़ पारे नंबर हूँ 0671-230-3153। तो बर्तमान आम सहित किए अच्छा फोन लाइन देखा। हेलो
1: अशोक पंडा मधुपाटना कटक।

0: कटक दिल से दिल तक सो चली बर्तमान डायलिन लाइव आज आपण टॉपिक रही पसंद से गोटे सदाबहार एवरग्रीन गीत कौन जहां शुणिले आपण बहुत खुशी अनुभव करती आम नंबर हूँ 0671-2303-153 बर्तमान किए अच्छा आम सहित फोन लाइन देखा हेलो
1: नमस्कार
0: किए कहते पुणी आपणकर प्रथम वार्ड टी को खाई दउछन्ती टिके भलो भाबरे
1: मो वार्डटा को रिजन जे कहि कि मो नाटा सुनि परनादि नै कि
0: माने ठीक रे आपण को प्रोनन्सिएशन माने बुझा पडुन ठीक रे नाटा टिके परिष्कार भाबरे कोंतु
1: उषा
0: लता साहू उषा माने कोन
1: उषा माने उषा मोडर से जन्म होइतिले बे ना देछिन उषा
0: उषा मुहूर्त ओके काजे कुन को स्वागत जणो छु आ कोन कहिबे आपणकर फेवरेट गीत कोन अछि निहाती गाइबा दरकार गाई की दुई पद हमको सुनाई दियंतु
1: देउजी मो बाकी आज किए आसीबो की सकाळ सकाळ कुआकिया काउरे बे काका का आ मन दुखर थिले ओ लागे

धन्यवाद। सधैं आपणमाने भी जोड़ी पारिबे एफएम रेनबो सहित आउ कहि पारिबे आपणक मनर कथा माने विशेष करी आज टॉपिक अछि आपणक पसंदर से गोटे सदाबहार गीत कौन जहाँ सुनिले आपण बहुत खुशी अनुभव करते। नंबर हूँ 0671230315। तो बर्तमान चलंतु शुणी नबा आउ गोटे मीठा गीता।

0: सभी बंधुर स्वागत आपण ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक तिल से तिल तक सो चली बर्तमान डायलिन लाइव चिट चाट रो आज आपण टॉपिक रही पसंद से गोटे सदाबहार गीत कौन रही शुणिले आपण बहुत खुशी अनुभव करती आपण मूड तुरंत फ्रेश हो जाए तो ए संपर्क में आपण मत आम सहित सेयर करेंगे नंबर हूँ 0671230315 बर्तमान किए अच्छा आम सहित फोन लाइन देखा हेलो
1: हेलो शुभ संध्या नारायण भाई नमस्कार
0: शुभ संध्या कार्यक्रम को स्वागत करुचु आपण को परिचय दिंतु
1: मो रेडियो सम्राट मुन्ना भाईजान कटक जलसर कोटिला तनापुर कहते
0: मुन्ना भाईजान हो गले मान मुन्ना पंडा
1: बहुत
0: बढ़िया बहुत बढ़िया समस्त हृदय था जो रेनबो फ्रेंड्स मान अच्छा कौन कहे फेवरेट गीत निश्चित
1: आध्यात्मिक आलोचना सुंदर लगे मत लगे आध्यात्मिक परिवेश राधा

0: मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन
1: बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई बहुत बढ़िया गीत गाँव आपको भयस हम आगु शुणी पूरा एकदम हृदय को छुई गला भाया भयस
2: गोटे
1: ना जस्ट गोटे लाइन गाइबे जस्ट गोटे लाइन हाँ।

ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ବି ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣ ସେ ଭାବରେ ଗାଇଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲେ ଆପଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଗୀତ ବି ଗାଇଦେଲେ। धन्यवाद धन्यवाद आपको कल्पना मैडम एफएम रेनबो सहित जोड़ी आपंकर फेवरेट गीत संपर्क में कहले। हेलो नमस्कार नमस्कार सदी आपर आम समय अच्छी तेज चलत बर्तमान आउ गए गीत शुणा स्टेट्यून्ड।

0: सदिट्यून कोचुंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे बर्तमान शो चली डायल इन लाइव चिट चैट आज टॉपिक रही आपण पसंद से गोटे सदाबहार एवरग्रीन गीत कौन अच्छी जहां शुणिले आपण बहुत खुशी अनुभव करती तो चलत लास्ट आउ गोटे दुईट कल नहीं जावा समय सरदेला कार्यक्रम को शेष भी करने को पड़े किए अच्छा आम सहित बर्तमान फोन लाइन रे देखा हेलो
1: हेलो भाई नमस्कार
0: नमस्कार के कहते
1: भाई
0: ममता बेहरा कहते ममता बेहरा कहते पूर्व बोधे रश्मिता बेहरा कर
1: थले अच्छा
0: आज टॉपिक बहुत फटाफट कही दियंतु आपनकर फेवरेट गीत कौन अछि
1: मन ना जगन्नाथ मुंता बड़ देउल
2: पारे नील चक्र
0: ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गीत बोलुछन्ति आपण बहुत धन्यवाद ममता मैडम एफएम रेनबो को फोन कले आपण को मन पसंद गीत कथा कहले नमस्कार हेलो हेलो फोन टी किए कर जानी हलानी किंतु फोन टी कटि जाइछि साथी एथिला आजर मन पसंद जोटा कि गीतर कार्यक्रम जो आपण को गीत बेसी भल लगे सुखरे हो दुखरे हो जेते बेले भी जाओ समय आउ मौसम नहीं कि आपण मूड भी परिवर्तन हुए और से परिवर्तन ताले ताले गीत भी आपण को अलग अलग किसी डिफरेंट गीत भी आपन को भल लगी पारे तथापि आपण मान जो पसंद गीत सेटा समस्त हृदय को छुईला आउ बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आपर पसंद भी रही रुचि भी बहुत सुंदर रही लास्ट कॉल ले जीवा की अछंती देखिबा हेलो हेलो तबे फोन टी ठीक रे भी कनेक्ट ही पानी तबे आज कार्यक्रम को शेष करबाई टी चलंतु सुनबा आउ दिए शेष गीता

28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

104.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुनतो कार्यक्रम सूचना प्रथमे चलित अधिवेशन गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस 58वां अध्याय सुनिबे संध्या 6:10 रे भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना 6:30 रे फिफा वर्ल्ड कप 2026 डेली अपडेट्स आकाशवाणी दिल्ली रु रिले कर प्रचार करिवो संध्या 17:30 रे संध्या 17:32 रे कार्यक्रम संध्या आसर किछि सुपरहिट हिंदी एवं ओडिया कथाचित्र गीत सुनिबे राति 8:02 रे कार्यक्रम गीतरे मितरे पुरुणा हिंदी ओडिया चलचित्रकु नेइ कार्यक्रम अभुला स्मृति राति 9:15 रे सुनिबे मनपसंद गीतर कार्यक्रम रेनबो एसमिस राति 10:02 रे सुनले चलित अधिवेशन कार्यक्रम सूचना

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्रीहरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

0: अधिकृताः दूरभाषसंख्याः निर्गताः। संख्या अस्ति 9891210115 9891210115 नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। शियोलद नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेश मंत्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायां आरंभिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगं अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेश मन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसम्पर्कमित्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्य अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्य मंत्री मनोहर लालः अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मंत्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं मेघालये, आन्तरिक कर्णाटके, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिम बंग प्रदेशे, सिक्किम राज्ये च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासर पर्यन्तं मेघगर्जनेन, विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार द्वीपेषु, आंध्र प्रदेशे, बिहारे, गुजराते, झारखंडे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्य प्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तर प्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तं एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 दिनांकादारभ्य 14 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम

0: वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु सप्त द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति। यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमा चानु करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम् एकं शून्यम् इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशं 5-0 पराजयत। इति वार्ताः।
1: टून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

प्रचार करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम प्रथम भक्ति गीत गाई श्रीचरण।

0: एडिस सकरी बाजुर भक्ति गीत कार्यक्रम आराधना ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आम परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक का संवाद नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती जितेंद्र कुमार नायक मुख्य संवाद सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमतार उपयोग नहीं मुख्यमंत्री गुरुत्व मुख्यमंत्री को साक्षात कले केन्द्रमंत्री रामदास अठावले सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को अधिक व्यापक करने केन्द्र और राज्य मध्य समन्वय सुदृढ़ नहीं आलोचना राज्यव्यापी आरंभ है सहरांचल जनसंपर्क कार्यक्रम एवं पुरी श्रीमंदिर आज अनुष्ठित महाप्रभु राजेन्द्राभिषेक नीति राज्य देई जाइथिबा सामुद्रिक अंचल केवल एक भौगोलिक सीमा नुहे एहा व्यापक सुजोग समृद्धि एवं आंतर्जातिक सहभागितार प्रवेश पथ बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन्ति। भुवनेश्वर लोकसभा भवन सम्मेलनी कक्षरे 14तम मल्टी एजेन्सी सामुद्रिक सुरक्षा ग्रुप नीति बैठक को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहिछन्ति भारत आज विश्वरे एक प्रमुख सामुद्रिक शक्ति भावे उभा होइछि एथरे ओडिशा प्रमुख भूमिका ग्रहण करुछि। राज्यर सामुद्रिक रणनैतिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ करिबा पई गंजाम ठारे एक गभीर समुद्र बंदर एवं पारादीप ठारे एक सिप बिल्डिंग क्लस्टर निर्माण करा जाउछि।
1: राज्यर आमर सामुद्रिक वाणिज्य सहित सांस्कृतिक आमर ये संपर्क एवं सेठीपाई आम डबल इंजन सरकार रे भारत सरकार मध्य ओडिशा रे अधिक पोर्ट निर्माण करिबा पई से आमको अनुमति देइछंती अनुमोदन करिछंती। कपाल पोर्ट पाखरे आउ गोटिए बाहुदा पोर्ट के निर्माण हवा पाई केंद्र सरकार सेथिरे घोषणा करिछंती एवं से प्रोजेक्ट मध्य आरंभ हो जाइछि।
0: एही अवसर रे मुख्यमंत्री सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्र रे कृत्रिम बुद्धिमता एवं अत्याधुनिक निरीक्षण नेटवर्क रो उपयोग उपरे गुरुत्वारोप करिछंती। एथरे मुख्य शासन सचिव अनुगर मुख्यमंत्री परामर्शदाता प्रकाश मिश्र पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया समेत उपकूलवर्ती राज्यर सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयकारी केन्द्र और राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। भारत विश्वर चतुर्थ बृहत अर्थनीति भाव उभा होइछि बोली केन्द्र सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राष्ट्रमंत्री रामदास अठावले कहिछन्ति। भुवनेश्वर राज्य अतिथि भवन आज गणमाध्यम को सूचना दे श्री अठावले कहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में गत 12 वर्ष धरी देश में अंतर्भुक्तिमूलक अभिवृद्धि एवं सामाजिक सशक्तिकरण उपर गुरुत्व दिया अनुसूचित जाति और जनजाति एवं दिव्यांग कल्याण सह तृतीय लिंगी और आंतविवाह प्रोत्साहन दिगरे विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। ओडिशार अनुसूचित जाति और जनजाति अन्यान्य पछुआ वर्ग कल्याण पाई केन्द्र सरकार बहुविध जनकल्याणमूलक कार्यक्रम त्वरान्वित करुछन्ति। राज्यरे शिल्प अनुकूल वातावरण सृष्टि होइपारिथिबारु निवेश वृद्धि पाउछि जहां आगामी दिन में युववर्ग निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिवो बोली श्री अठावले गुरुत्वारोप करिथिले। एहा पूर्वरु केन्द्रमंत्री लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात करी राज्यर सामाजिक न्याय संपर्कित विभिन्न प्रसंगे आलोचना करिथिले। आगामी दिन में केन्द्र और राज्य मध्य समन्वय को अधिक सुदृढ़ कर मधुबाबू पेंशन और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आदि राज्य सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजना संपर्क में मुख्यमंत्री श्री माझी केन्द्रमंत्री को अवगत कराइथिले। एही अवसर में श्री अठावले वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न विभागीय कार्यक्रम और योजना संपर्क में समीक्षा करिथिले। ओडिशार समृद्ध ऐतिह्य बौद्ध धर्मर प्रसार एवं शांति बार्तार यार अवदान को जाति और अंतर्जातीय स्तर में प्रदर्शन करने को केन्द्रमंत्री उपस्थित अधिकारी परामर्श देते। भुवनेश्वर अरण्य भवन ठारे केन्दुपत्र चिंतन शिविर आयोजित हो जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख शासन सचिव भास्कर ज्योति शर्मा कार्यक्रम में जोगदे आगामी दिन में केन्दुपत्र संपर्कित कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ और प्रभावशाली करने व्यापक प्रशिक्षण आयोजन।

0: ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।

0: या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

सधैँ ट्युन गर्छन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय वर्तमान रवि 17:03 हेइजाइछि आउ वेलकम करिबो आपन मनकु आज रो इभनिंग अपडेट्स को सधैँ आज होछि जून 24 तारिख भारतीय इंग्रजी साहित्यर जणे अग्रणी सृजनशील लेखिका अनिता देसाईंकर आज होछि जन्मदिन 1937 मसीहा जून 24 तारिख रे अनिता देसाई उत्तराखंड रो मसूरी रे जन्म ग्रहण करथिले जर्मनी माता एवं बंगाली पितांक संतान अनिता देसाई शैशवरु भाषा एवं साहित्य प्रति गभीर आग्रह देखाइथिले परवर्ती समय रे से दिल्ली विश्वविद्यालय रु इंग्रजी साहित्य रे उच्च शिक्षा ग्रहण करी निज लेखनी माध्यम रे विश्व साहित्य रे एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करथिले तांकर जन्म

सधैं अनिता देसाईको साहित्य सृष्टिले मानव मनर सूक्ष्म अनुभूति नारी जीवनर संघर्ष एवं पारिवारिक सम्पर्कर गभीरता अत्यन्त सुन्दर भावरे चित्रित होइछि। तंकर प्रथम उपन्यास क्राय द पीकक प्रकाश पाइबा परे साहित्य महलरे से विशेष परिचित लाभ करिथिले। या छोडा वॉइसेस इन द सिटी, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे इन कस्टोरी, फास्टिंग फेस्टिंग एवं द विलेज बाय द सी परि अनेक ख्यातनामा कृति तंकर साहित्य संभार को समृद्ध करिछि।

साथी समय हेची आज इवनिंग अपडेट्स को एड़ सेसे करिबा ट्यून कर छुंती 100.4 आगाजबानी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय बर्तन राति 17:15 हेबाकू जाउची आमर परवर्ती कार्यक्रम ओडिया रे संवाद सुनि परिबे किछ क्षण मध्यरे

सतीट्यून कछुन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय वर्तमान संध्यासर कार्यक्रम को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तबे चलंतु एंजॉय करबा किछि म्यूजिक रु तापरे कथा बा किछि इम्पोर्टेंट माने जेमती कि बर्तमान तो रेनी सीजन स्टार्ट हो सारी रेनी सीजन रे आमको कौन करने को पड़ो आम गला काली भी कथा आम केमी भाव में बर्तमान रेनी सीजन रे निजर जत्न नवा विशेषकर खाद्य केमती खाइबा कौन करवा यह सब संपर्क में कथा कि आज किसी हेल्थ टीप्स संपर्क में आउ कि तथ्य आपखे पहुंचेबू कड़े भी जातु नहीं शुणु था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

सदी टून कौशंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली वर्तमान संध्या सर आउ मीठा मीठा गीत मध्य आपण पाखे पहुंची जाऊँ साथी आम कथ बर्तमान जो दक्षिण पश्चिम मौसम वायु एंट्री कर सारी आबुठ बर्तमान कौटि ना कौटि तो वर्षा जारी रही कौटि टी शुखिला रही पुणी काली भी वर्षा हम एमती तो समय बर्तमान चलो कि समय विशेषकर आम स्वास्थ्यगत सचेतनता बहुत जरूरी स्वास्थ्यगत सचेतनता जो जरूरी है तो आम समस्त अधिक जानते आम बर्षा दिन में निजी सुरक्षित रखा तथा टिके टिके आम पुणी आउ थे पुनरावृत्ति करदे बहुत भल हम कहीं सब जिते जिते मन पड़े जिते आम शुणा से आम निजर निजक सुरक्षित रखापी निजर केयर नापी आहरी इच्छा बढ़ विशेषकर बर्षा दिन में आपंट पा दूषित हमारे बहुत संभावना रोज तेणु सब फुटा पा पीवा कहुच्छी तेणु आप फुटा पा पीपारे नचे फिल्टरिंग करके पीपारे सहित आउ गए कथ हूँ बाहर जितेबले आप खाद्य खाऊ विशेषकर कटा फल जिते बाहर खाऊं से भल भाव गुरुत्व देवा दरकार कटा फल खोला खाद्य आसी खाद्यर यह समय दूरे रुहतु घरे प्रस्तुत गरम गरम खाद्य आप खाई जहां आप शरीर पर बहुत लाभदायक सब्यस्त हो पार खावा पूर्व शौचालय व्यवहार पर साबुन में हाथ धोवा को भूलतुनि आर्षे जिते भिजुंट अधिक समय भिजिकी रुहतुनि वर्षा जो भिजिला जो भिजा पोशाक पिंधिकी रोचे बेस समय न पिंधिकी रही भल हम कहीं जी आप अधिक समय पिंधिकी रोचा काश और चर्म रोग हमारे बहुत संभावना रही है।

ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचलिछि वर्तमान संध्या सर मीठा मीठा गीत सहित किछि इम्पोर्टेंट टिप्स मध्ये आपण मन पकरे पहुँचि जाउछि आमे कथा होतले वर्षा दिन रे आपण निजर जत्न केमते नेबे सदी मौसा ठारु ए समय रे विशेष सतर्कता रहबा बहुत जरूरी घर चारि पाखरे पानी को जमार भी जमिबाकु दियंतुनि जदि एसबुक करिपारिबे तबे निश्चित भाबरे मशार मशाकु मध्ये आपण प्रतिरोध करिपारिबे काहेकिना एहि समयरे डेंगू एवं मैलेरियार जो मशा सेमाने सेमानकर वंश विस्तार करिथान्ति त सेथिपई आपणको मध्ये गुरुत्व देबाक पडिब रोग प्रतिरोधक शक्ति बढेबा पई आपण लिंबु कमळा अमृतभंडा अदा तुळसी एवं भिटामिन सी युक्त खाद्य सफिसियंट परिमाणरे एहि समयरे आपण खाइपारिबे विशेषकरि पादरे

सधैँ छिन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय वर्तमान मीठा मीठा गीत कार्यक्रम गीत मित्र गीतर मित्र कार्यक्रम अभुला स्मृति को आपण मानको बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन वर्षा आसिले तुम कथा भारी मन पड़े वर्षा आसिले कविता लेखिबा को बहुत इच्छा हुए सेति पई त वर्षा आसिले तमे भारी मन पड़ वर्षा रातिरे तुम कथा भाविबा को भारी इच्छा हुए

0: ସଦୀ ସମୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଗୀତରେ ମିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया।

0: ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजना

0: की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We heard 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज एसएसके अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों

0: लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

खाते चिरा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंगा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

ट्युन गर्छन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्वागत आपन मनको आपनको खासो रेनबो इसमें इसको रेनबो एसमेस रे कोई रखिबो जो माने एसमेस करबा को चाहौछंती हमको मेसेज करि परिबे मेसेज करबा पई फर्स्ट टाइप करन तो एफएम आरसी तापर गुटे स्पेस देकी को फिल्म को एल्बम रे गीत सुनबा को चाहौछंती तार ना लेखंतु तापर गुटे स्पेस देकी गीत रो फर्स्ट लाइन लेखंतु तापर गुटे स्पेस देकी आपन को ना एवं एड्रेस से तम पाको को पठि दियंतु 0949596321 एवं 8895254200 ए नंबर जरिया रे तो देखिबो फर्स्ट एसएमएस के करछंती प्रथम एसएमएस हमको करछंती सुनीलकांत महंती सिलु एंड आकृति देवकाली संकत्रास कटकरु सुनबाक चाहिछंती आरजु मूवी रुकित गाइछंती कुमार सानु अलका याग्निक एवं उदित नारायण परवर्ती एसएमएस करछंती आवाज सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा अली शापा एवं तमन्ना रेड्डी टाटा स्टील प्लांट रु आपण सुनिबाक चाहिछंती बाहर आने तक मुहिर गीत गाइछंती पंकज दास एवं अनुराधा पडवाल तबे पहुंचि रहु छु आपण मन पाखरे आपण को मन पसंद गीत

पर्वती अस्मे स्कोच्छन्ति मुनि रानी सोना चंदन संजू संतोष निर्मला एवं मामालि कांतुला ठाकुरु आपण सुनिबाकु चाहिछन्ति रक्त गोलाप कथाचित्र गीत गाइछन्ति एसपी गीता प्रणव किशोर पटनायक धनंजय शतपथी। नेक्स्ट अस्मे समको करछन्ति हेलो भाई एंड तपन फ्रॉम सेन आठगढ़ आपण सुनिबाकु चाहिछन्ति मेला चलचित्र गीत गाइछन्ति सोनू निगम अलका याग्निक एवं रूप कुमार राठौड़।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी

पार्वती इसमें इसको छिंति विजय कुमार दास सस्मिता दास मामुनी एंड पूजा सौरी महासिंहपुर बहुग्राम कटक रु आपण सुनिबाक चाहिसेंती सकल तीर्थ तोचरणे चलचित्र रु गीत गाइछेंती सोनू निगम एवं इरा महांती। नेक्स्ट इसमें इसको छिंती पहाड़ी मंदिर कॉलोनी झारसुगुड़ा रु बटकृष्ण पात्र एवं स्मृति रंजन स्वाई आपण सुनिबाक चाहिसेंती एयाम संसार कथाचित्र रु गीत गाइछेंती हयमंती शुक्ला एवं साथी।

0: ସଦେଇଟି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ରେନ୍ବୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟ୍ୟୁନ୍ କରୁଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ତିଲ୍ ସେ ତିଲ୍ ତାକ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया

0: संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मेलनी कक्षरे चतुर्दश मल्टी एजेन्सी सामुद्रिक सुरक्षा ग्रुप नीति बैठक उद्घाटन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता एवं अत्याधुनिक निरीक्षण नेटवर्क उपयोग उपरे देले गुरुत्व। राज्य में चलता स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रिया SIR सर चारिदिन बाकी। 99.93% भोटर को परिगणना फर्म बंटन शेष। 3,10,00,000 अधिक भोटर तथ्यर हो सारी डिजिटाइजेशन। राज्यव्यापी आरंभ है सहरांचल जनसंपर्क कार्यक्रम। पुरीटे राज्यस्तरीय कार्यक्रम शुभारंभ कले गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। 2036 विकसित ओडिशा लक्ष्य पूरण दिगरे सहरी विकास जनभागीदारी भूमिका उपरे कले गुरुत्वारोप। समस्त शिक्षानुष्ठान एवं कोचिंग सेंटर गुड़िकर अग्नि निरापत्ता ऑडिट पाई ओडिशा राज्य विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष निर्देश। 15 दिन मध्य कार्यानुष्ठान रिपोर्ट दाखल करने को जिलापा सूचना। कटक जिले में आसंता जुलाई मस 16-31 तारीख पर्यंत डायरिया निराकरण अभियान होगा नहीं जिला मुख्य चिकित्सा और जनस्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर पुष्पिता महांती सूचना। यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्णामेंटर द्वितीय पर्याय को उन्नीत हले भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जली और गायत्री गोपीचंद। ओडिशा को संपूर्ण स्पर्श कला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। राज्य विभिन्न स्थान में सामान्य मध्यम धरण वर्षा होगा नहीं भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना।

सुनी छंदी आकाश पानी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक निराचल धर्मराधिपति भक्तवत्सल पतित पावन श्री जगन्नाथ महाप्रभुक श्रीचरण से कोटि कोटि प्रणाम जणे आपण को स्वागत जनाउछि आज सकाल भक्तिमय परिसर को अर्घ्य थाली को सूर्यंकर प्रथम किरण जेतेबेले धरित्री को स्पर्श करे सेतेबेले भक्तिर पुष्प श्रद्धार चंदन एवं प्रेमर प्रदीप दे प्रभुंक चरण रे अर्पण करिबा आमर प्रत्येक दिनर कर्तव्य हेबा उचित। हे कालिया ठाकुर, हे दारु ब्रह्म, तुम करुणा दृष्टि समस्तंक उपरे वर्षित हो। जीवनर प्रत्येक पथरे तुम आशीर्वाद आमर पथ प्रदर्शक हो। हाँ साथी, सकालटी जेपरी भक्ति रे आरंभ हुए सारा दिनटी सेपरी शांति एवं सकारात्मकता रे भरी जाय थाए। तेणु आसंतु ना आजर दिन को आरंभ करिबा महाप्रभुंक नाम स्मरण रे। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः।

सुनी चंदी आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्यथाड़ी मैंने शुणी आपण साथी स्मृति को पुरी रथजात्रारे तीनोटी रथ नंदीघोष तालध्वज एवं देवदलन नंदीघोष श्रीजगन्नाथ रथ तालध्वज श्रीबलभद्र रथ एवं देवदलन देवी सुभद्रा रथ देवी रथ से श्री सुदर्शन विराजमान करती किंतु बंधु यही सब रथ गोटे गोटे हेले से अनेक नाम रही भाई नाम पछर तात्पर्य कौन ए नाम एमिति काहेकि रखा जाइछि कौन रही ए नाम पछर कहानी हाँ बंधु ए नंदीघोष रथ नंदीघोष अच्छी दुईटी शब्द नंदी एवं घोष नंदीर अर्थ आनंदमयी एवं घोषर अर्थ हेउछि ध्वनि एणु नंदीघोषर अर्थ ब्रह्मानंद प्रदान करुथिबा ध्वनि घोषर अन्य अर्थ मध्य मंगल ध्वनि एणु श्रीजगन्नाथ रथजात्रार अन्यतम नाम हेउछि घोषजात्रा जहाँ समस्तंकर मंगल निमन्ते उद्दिष्ट हेथाय

सुनिशंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्य थाली शुणी आपणी स्मृति को तेबे बलराम दासंकर एही कहानी सहित आउ एक कहानी मध्य से लिखिछंती। से अनुसारे थरे रावण देवदेव महादेवंकर दर्शन पई हिमालय को जाइथिला। सेतेबेले शिव बाहन नंदीक उपरे रागी से तंकु चापुडाटी मारिथिला। नंदी से नै ब्रह्मांक पाखरे अभिजोग करिथिले। तेणु सेही अपमानर प्रतिशोध नेबा पई राम रावण युद्ध बेले ब्रह्मा नंदीक लंकार युद्ध क्षेत्र को पठाइथिले। बलराम दासंक वर्णना अनुसारे ब्रह्मार वचने नंदिकेश्वर गला गरुड़ ध्वज रथ चक्ररे बसिला। शरीर लुचाई से गोपते अछि रही पूर्वर साप अर्थे ब्रह्मार बर पाई घो घो करी करी राव घोष शुभे शुणित उसत होइले सर्वदेवे। एही उपाख्यान अनुसारे नंदी घोष रथ चलला बेले ता चक्रु जो शब्द बाहरे ताहा शिव बाहन नंदीकर घोष बा घो घो किरीकिरी शब्द बोली कहुए। गुप्तरे रथ चकरे बसी रही नंदी से घोष करिथाए। ताहा सुनी समस्ते आनंदित होइथांती उत्साहित होइथांती। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज मध्य तांकर वैदेहीस विलास काव्यरे एहाको ग्रहण करिछंती किंतु एही शब्द को से सर्जन गर्जन बोली कहिछंती।

तेबे सती शेषरे अर्घ्यथाळीर अंतिम पर्वरे एतिकि कहिबाकु चाहिबि जेपरि महाप्रभुंक नन्दीघोष रथ लक्ष लक्ष भक्तंक टाणरे आगकु बढ़ि चले सेपरि आम जीवनर रथ मध्य भक्ति सत्य ओ सेवार रज्जुरे बन्धार हो जीवन पथरे जेते बाधा विघ्न आसुना काहिकि महाप्रभुंक करुणा एवं आशीर्वाद आमकु सठिक दिग देखाउ नन्दीघोषर चका जेपरि निरन्तर गतिर सन्देश दिए सेपरि आमे मध्य जीवनर सकारात्मक चिन्ता सत्कर्म एवं भगवानंक स्मरण सह आगकु बढ़ि चलिबा।

सुनी चुंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 6:40 आरंभ करुछु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवत आज शुणंतु यहाँ 75वां भाग प्रयोजना सुहास महांती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात
1: आकाशवाणी। सूरज की किरणें दस्तक दी है, सूरज की किरणों ने दस्तक दी है, फूलों ने हवाओं से दोस्ती की है। उठिए जनाब, नई सुबह आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि हर दिन किस्मत नहीं बदलता, लेकिन हर सुबह किस्मत बदलने का एक नया मौका जरूर देता है। जो सुमंग और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त स्मृति। अब आपण मन स्थिति छंदी आपण मनंकर पसंदीदा FM रेनबो चैनल, यस, जहाँ कही थे सबो दिन सबो बेले सबो मुहूर्त रे दिल से दिल तक। चलन्तु ना शुभ सकाळ सो जेतेबेळे स्टार्ट हेगलाणी, सकाळ सकाळ आपण माने जेतेबेळे स्मृति को सुणिछंती आपण मानकर मनोरंजन केमिति भी हबनी, मनपसंद रा गीत सहित किछि कथा निहाती भाबरे रहिबो, एन्जॉय करिथांतु आम सहित कनेक्टेड रहिथांतु।

है। अगर कोई ऐसा देखे तो दिल धड़कता है, और जब दिल धड़कता है तो दिल प्यार में पड़ता है। तो दोस्तों, ये प्यार का जो रंग है ना, वो बहुत ही सुंदर होता है। मतलब जैसे सूरज जैसे पहली बार उगता है और वो जो किरणें होती है ना, उसी टाइप की ही होती है ये प्यार की किरणें, प्यार का रंग। तो आज दिन उठा टिके अलगा टिके रंगीन टिके मनमोहन, कारण आज हमें कथा हो रंग विषय। बिल्कुल, रंग आम जीवन में केवल सौंदर्य नुहे, भावनार मध्य परिचय। आउ सेही रंग मानक भितरे गोटे सुंदर रंग होउची जोटा आमर विशेष करी झियो मानक सहित जोड़ा जाइथाय। ठीक गेस करी चंदी, पिंक रंग, रंग माने गोलापी रंग, जोटा स्नेह प्रेम कोमलता एवं आशार प्रतीक। आपण भावुथिबे स्मृति सकाळु सकाळु पिंक रंग विषयरे काहेकि पिंक कलर विषयरे काही कथा होची। बिल्कुल, कारण अछि, कारण आज आमे सेलिब्रेट करूछु नेशनल पिंक डे को। अच्छा, आपण केबे भाबिछन्ति सकाळर आकाशर सूर्योदय बेले जो गोलापी छटा देखा जे, सेटा काहेकि आमको एते भल लागे कहिले? कारण ए रंग मनरे पॉजिटिविटी आनी थाए, सकारात्मकता भरी दे थाए, जोड़ा कि मन भितरे शांति सहानुभूति एवं ममतार संदेश दे थाए। आज दिन रे विश्वर अनेक स्थान रे पिंक डे को आमे सेलिब्रेट करूछु, कारण ए डे को सेलिब्रेट करिबा पछरे मध्य बहुत किछि कथा रहिछि। फ्रेंड्स, ए गोलापी रंग केवल एक रंग नुहे, एहा गोटे मेसेज, गोटे संदेश। कठिन समय रे मध्य कोमल हृदय रखिबे, व्यस्त जीवन रे मध्य हसिबा सिखिबे एवं अन्य मानक प्रति भल पाइबा रखिबे बा भल पाइबा बांटिबे। आउ एटा ही होची आजर डेरा स्पेशलिटी।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। न्यूज ऑन एआईआर ऐप लाइव स्ट्रीमिंग में भी आप हमसे कनेक्टेड है और आज की सुबह आप सुन रहे हैं आपके हम सफर होस्ट स्मृति को। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे एक रंग के बारे में जो प्यार का भी प्रतीक होता है, अपनापन का भी और खुशियों का भी प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, आज है नेशनल पिंक डे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ पलों में हम भरने वाले हैं आपकी सुबह में गुलाबी रंग की मिठास, मुस्कान और ढेर सारी पॉजिटिविटी। और हमेशा स्मृति बोलती है मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की सुबह को खूबसूरत बना सकती है।

सुन चुंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक रे आपण माने सुनी चुंदी आपण का साथी स्मृति को आउ सो चली छी सुबह सकाळ सो आजर डेट हो जी 23rd जून एंड आजी आउ गोटे सुंदर दिन को आमे सेलिब्रेट करूछु आज हो जी इंटरनेशनल ओलंपिक डे ए दिन टी आधुनिक ओलंपिक आंदोलन आरंभ एवं यार मूल्यबोध को स्मरण करने पालन करा जाए 1894 मसीह एही दिन आंतर्जातिक ओलंपिक कमिटी गठित होता 1948 ठारु ओलंपिक डे पालन आरंभ होता बंधु दौड़ा केवल पदक नुह निज स्वप्न को छुईवा खेल केवल जितना नुह निजक गढ़ा फ्रेंड्स ओलंपिक केवे खेल गोटे प्रतियोगिता नुह एहा हेउची मनीषर साहस श्रृंखला बंधुत्व एवं सम्मानर प्रतीक पृथ्वीर विभिन्न देश भाषा एवं संस्कृतिर लोकमाने एकाठी हे एटा प्रमाण करंती जे खेल हेउची एकतार भाषा ओलंपिक डे रो मूल संदेश हेउची मूव लर्न एंड डिस्कवर अर्थात चालंतु सिखंतु एवं नुआ किछि अन्वेषण करंतु

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक, और आज की सुबह आपके साथ हूँ हम मैं यस आपकी हम सबर होस्ट आरजी स्मृति आपके साथ जुड़ी हुई है आज की सुबह, और सो चल रहा है सुबह सौ कड़ो। सो 23 जून आमे आज सेलिब्रेट करछु इंटरनेशनल ओलंपिक डे को। सो आज दिन रे एमिति गोटे कथा निज मन भितर भाबी परबा जे प्रत्येक दिन किछि समय खेल व्यायाम किंबा शारीरिक क्रिया पई देबा उचित, कारण सुस्थ शरीर रे ही सुस्थ मन रो आधार। एंड सब बेले सेति पई स्मृति आपण मनकु कहिथाय जे गुड हेल्थ रखिबा निहाती भाबर आवश्यक, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। फ्रेंड्स जीवन एक ओलंपिक ट्रैक पर केबे जितिबो केबे हारिबो, किंतु सबुठारु बड़ कथा हेउची दौड़ीबा केबे बंद न करिबा उचित।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

Hey friends, welcome back. Tune kari chanti Akashvani FM Rainbow Katak 100.4 Dil se dil tak. Avananka sahita jadi hi padanka saathi smriti. Kade sundar sampark ko jadi gadhiba pai chahuchanti sampark ra dora ko jadi majbut kariba pai chahuchanti tahale anek katha ko anadekha kariba ko padithai. Bandhu bahut jagare जदि निजर जितिबार चांस मध्य जदि थाए ना ताले संपर्क को जदि बंचेबा पई से जगह रे पड़ी थाए ताले सेठी हारिबा पई मध्य पड़ी थाए कारण सेई जो हारिबाटा हारिबा नहो सेई हारिबाटा होची आपनंकर जीत कारण आपन कोटे सुंदर संपर्क को जीति छंती निजर प्रियर मनुष्य को केबे मध्य हाथ छड़ा करंतनी जति जहा परिस्थिति आसना काहे कि निजर मतलब जिसको बोलते हैं मरते दम तक निजरा प्राणों प्राणी चेष्टा करते से संपर्क को सुंदर करी गढ़ी

हजार चेहरा भितरे से गोटिए चेहरा से गोटिए मन से गोटिए मनीष अति आपणार लगी थाए बिल्कुल आ से आपणार मनीषटी ही आपणक हृदय रे घर कर रही जाय थाए सुनिछंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी मॉर्निंग मेलोडी एंड ए मेलोडियस मॉर्निंग रे आपण मनक सहित मु रही छी आपणक साथ ही स्मृति अच्छा खाइबा को जेते भलो भाबरे आमे मसला देकि आमे प्रिपेयर करले मध्य जदी से खाइबारे लुण टिके न पड़ी थाए ना सबू जो कहते सुखुआ बार वर्षर तपस्या सुखा सुखुआ पुड़े गला भाया से खाद्य सब कि फिका लगी थाए बा भल लगि नए तेबे ए जो लुण खाइबार अभ्यास अनेक लोकंकर अभ्यास अछि जे खाद्य खाइबा समय रे आहुरी अधिक लुण छिंची खाउछन्ति जमीक डाली पनीपरिया कि सालाड हो लुण पड़ी आम आउटे लुण आड कर अतिरिक्त लुण मिसई था तेरे ये अतिरिक्त लुण न मिसले स्वाद असंपूर्ण लगे अधिकांश धारणा रही खाद्य लुणर परिमाण सठिक पर किसी व्यक्तिशेष खावा पूर्व अतिरिक्त लुण विंचवा पसंद करते जदि यह अभ्यास लोक साधारण मन हुए कि आयुर्वेद शास्त्र अनुसार एटा धीरे धीरे आपणक शरीर उपरे तार क्षतिकारक प्रभाव पकाए जदि एही अभ्यास को समय थाउ थाउ प्रतिरोध न करा जाए ना बंधु तेबे या फळरे सृष्टि होतिबा स्वास्थ्य जटिलता आगामी समय रे बहुत गुरुतर रही पारे कथा बाजी विषय रे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रही छि मॉर्निंग मेलोडी रे वर्तमान समय आ गोटिए मेलोडियस गीत आछि आपण मानक पाखकु।

वेलकम ब्याक फ्रेंड सुनिचंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को एंड समय के बे भी थमेनी ट्राए करू आम समय को थमेवा पाई बट समय ता गति आग को बढ़ी था। ये देखुना 8:48 अलरेडी सब चली मॉर्निंग मेलोडियन आज मॉर्निंग रे आपण मान सहित मु रही आपणी स्मृति आयुर्वेद शास्त्र अनुसार आवश्यक ठार् अधिक लुण खावा द्वारा शरीर पाचन शक्ति दुर्बल होता है। ग्यास एसीडिटी पेटर जलापोड़ा एमती अनेक समस्या सृष्टि होता है। अत्यधिक लुण खावा द्वारा हाड़ धीरे धीरे दुर्बल होता है बंधु जहांफल जीवन परवर्त समय जितेबले आम ओल्ड एज रे पदार्पण करते जंत्रणा ऑस्टियोपोरोसिस एमती अनेक किसी डिजीज हेबार आशंका बढ़ी जाए। सो खाद्य अतिरिक्त लुण मिसेबार जो अभ्यास रही अच्छी जदि ताको ह्रास करंतु एवं धीरे धीरे ए अभ्यास को संपूर्ण रूपे बंद करंतु। रांधिबा समय रे जेतिकी परिमाणर लुण व्यवहार करबा उचित सेतिकी व्यवहार करंतु। स्वाद वृद्धि करबा पई आपण सेतरे लेंबो ताजा धनिया पत्र ए सब पकेई परिबे। प्रतिदिन जदि आपण सीमित परिमाण रे लुण खाउछंती बा जदि ट्राए करंतु बहुत कम परिमाण रे लुण खाइबा पई जो माने वेट लॉस करबा पई चाहउछंती जो माने फिट रहबा पई चाहउछंती से माने जदि किछि दिन पई लुण एंड सुगर ए जो दुटा जक जिनिस अछि ताको जदि कम करंती बा टोटली बंद भी करि दियंती जदि पारुछंती ताहले सेटा आपनकर हेल्थ पई बहुत भलो एंड बहुत शीघ्र मध्य आपन जो टार्गेट वेट रहिछि सेटा को आपन अचीव करि परिबे।

0: मुझ संतोष मल्लिक कहूँ माकड़ापड़ा भरतपुर जिला जाजपुर
1: क्या बात है संतोष भाई वेलकम कर छु एफएम रेनबो को बहुत सुंदर स्वर बढ़िया लगला सुनिया पे गीतटी
0: आज जो मा हाथ रंधा जो खाद्य जो प्रश्न कर हाथ रंधा खाद्य विषय कौन कह तो जहाँ करियो पूरा सुमान अमृत
1: हाँ
0: तेणुक माँ हाथ रंधा कथा न कहले भी सरे

0: सुनी चाहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाल रे आपण माने सुनी चाहिए आपण का साथे स्मृति को सो चली छी डायरी लाइव एंड आज हमें कथा हो जो मां कर सही हाथ रंदा विषय रे जहां को आपण माने सब मिस करी थांती यस 0671-2303-153 ए नंबर रे आपण माने स्मृति सहित कनेक्ट हे परबे एफएम रेनबो रे देखिए आज जन कॉलर आसिकलि कि अच्छा हेलो
1: मैडम नमस्कार गीता कहूली जगत सिंहपुर
0: गीता भौनी वेलकम करुचु एफएम रेनबो को
1: आज्ञा
0: केमती अच्छा
1: मु तो बढ़िया अच्छी
0: अच्छा जो हॉल रूट के बाहर
1: बढ़िया अच्छा

0: सुनी चुंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी डायल इन लाइव आपण आ पचर छी आपण मानन को जे मां कर सही हाथ रंथा कथा जोटा को आपण माने सब बळे मिस करंती एंड जेते दूर रे थिले मध्ये मां कर सही हाथ रंथा कथा मने पड़ी जाय जेते बळे सही डिस्ट्री आपण को सामना को आसी थाए। हेलो
1: माठारु के ही सुंदर नाही माँ डाकू ठारू

0: दीदी नमस्कार।
1: क्या बात है, इतने सुंदर पूरा ट्रैक रे गाई जो यार, बढ़िया लगला।
0: अच्छा
1: अच्छा, परिचय कह दियो।
0: साई
1: बेलपड़ारू आम सहित कनेक्ट हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत टे गाइल माँ विषय में। माँ को हाथ रंधा टी बहुत भल लगे तुमको?
0: मो मामा तो सब रोसे पूरा बढ़िया करे, हेले गोटिए प्रॉब्लम है या यदि माने अत्यधिक प्रशंसा कर दो ताल टिके गड़बड़ हो
1: जाए। एडा थाए, एडा सब मामा को टिके टिके थाए दोसो।
0: आज्ञा, जत्ते बेले भी जा बनै थाए हम पचरि भलै छी ना कोन भलै छी ठीक ठाक है जी, एंती हम कहू यदि प्रशंसा एमती कर दो नाही, इत्ते सुंदर इत्ते बढ़िया है छी, यदि अत्यधिक प्रशंसा आई गला आतर को जत
1: चेष्टा करती पे भल लगे खावा, कि पूरा प्रशंसा कर दो ताले से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती नहीं कि
0: सब
1: बढ़िया। अच्छा सही, तथा मानते कौ डिश टी भल करती माँ, मैंने सब तो रांधती कौटा भल करती?
0: मत तो बस मानते मटन चिकेन मैं बढ़िया हुए, घाट तरकारी सुंदर हुए, मानते सब बेले भी कहे करने रुटी सागर घाट तरकारी मत भल लगे
1: खाया,
0: सब कहे रात कर।
1: अच्छा बहुत बढ़िया, थैंक यू साई, आज कॉल करी छ, इते बढ़िया हसे ही लव्यू, मजा लागिला, थैंक यू सो मच कॉल करी थी वारू।
0: धन्यवाद दीदी, रहली नमस्कार।
1: नमस्कार, कनेक्ट हूँ फटाफट आम सहित 0671-230-3153 नंबर रे स्मृति रही पचारूची माँ से हाथ रंधा कथ आज आम कथा हूँ देखा आज जन कलर आसीगले किए अच्छे। हेलो
2: हेलो मैम, नमस्कार, जय जगन्नाथ।
1: नमस्कार, जय जगन्नाथ, किए कहते भाई?
2: मैम प्रफुल्ल भगवान कहू कुआरपाल माणिया मंदिर।
1: प्रफुल्ल भाई वेलकम कर रेनबो को।
2: मैम गोटे कथा कह रही।
1: हाँ कहू ना,
2: दिन तो पचार चलचित्र कथा मु बहुत चेष्टा कली के लगलानी, भल उत्तर भी कौन करी बाछी रखी थी सेना फेना देखी थी, आम तो फास्ट कही वामदेव भाई विषय वस्तु करे मुझे कहूनी, मोर गोटे अभियोग अच्छी मैम।
1: हाँ
2: कहदेती क्या आम बर्तमान जड़े भाई फोन करते कहले ना समस्ते बारंबार फोन करम फोन लगुनि मैम, मुझे कहूँ धीरे धीरे तीन दिन रेगुला लगुच कहीं कम्प्लेन कर। घंटा घंटा रही लाइन रही फोन करुच कह लगुनि से कथा ईश्वर निर्भर आप निर्भर आउ जो भाई आम से फोन करते कहले मोर जमा लगुनि कहीं बारंबार लोक फोन उठाऊन आउ अलग लोक उठाऊ बारंबार से भाई सप्ताह है सात दिन जगह लगे आम साहू भाई जड़े।
1: अच्छा हाँ ठीक अच्छे,
2: कौन से भावुंत से खाली एक जो फोन करते फोन करेंगे ना कौन
1: प्रफुल्ल भाई? कनेक्ट होचे धीरे धीरे समस्त सहित कनेक्ट होचे, आपण भी आम सहित कनेक्ट होचे तो तेबे टिके जो राग रुषा मान अभिमान रहिबो परिवार भीतर समस्त थाए आम मान रही तेबे सबकिछ बुझाबणा पर भी आम आग को बढ़िबा कार्यक्रम को सुंदर भाव में आग को नेबा, तेबे कहतु आज आम सहित कनेक्ट होती प्रफुल्ल भाई, आपण आम सहित कनेक्ट होती तेज कह माँ का हाथ रंधा विषय आज कथु माँ का से हाथ रंधा विषय से इमोशन रे चली चुआ में कहतु कौन रही डिश टी स्पेशल डिश?
2: मैम देखो मैम तो चली गले मोर 25 जनवरी चली गले कि माँ कथा मुझे कही पार मो हाथ रंधा कथा जी आप कह आज कहे चल सर ना गोटे कानी सीरीय तरकारी कर बसिक दिन सारा खाऊबी।
1: अच्छा
2: जी चकुली पिठा कर से चकुली पिठा कले से आहरी भल न कहले
1: गोटे
2: पानी छड़ा पिठा जी कर 15 दिन लुचे रखी थब
1: मैंने कौन कौन से मत कहते बुझे
2: पानी गोटे जो चूना टाक आम चक सीझा हाब चकटा हाब से पानी टाक पूरा पता हम पानी फुट से पिठा टा छणा हाब।
1: ओके अच्छा

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता

0: है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात
1: एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती तो इसीलिए जो है अभी उसी के बारे में बात करना चाहिए मेरे दोस्तों ट्यून कर चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो का 100.4 दिल से दिल तक प्रत्येक मुहूर्त हो इम्पोर्टेंट प्रत्येक समय ए प्रेजेंट हो इम्पोर्टेंट तेणु सब बेले वर्तमान रे बंचिबा सिखिबा आवश्यक आपण को साथी स्मृति रहिछ आपण मानक सहित आपण मानक फरमाइश रे गीतर समय मध्य ऑलरेडी हे गलानी तबे चलन तो आ समय वेस्ट करिवानी संगे संग आपण मानक लव लेटर्स पडुछि आ प्ले करुछि आपण को मनपसंद रे गीत आमा सहित कनेक्ट हे चंती ओके आम सहित कनेक्ट होती राकेश रीता मामुनी एंड सुमित्रा जगत सिंहपुर आम सहित कनेक्ट होती एसएमएस मध्यम एंड शुणापी चाहते आशिक बनाया आपने फिल्म टाइटल ट्रैक टी शुणापी चाहते एंड डेडिकेट कर टू ऑल लिसनर्स ऑल आरजे एंड ऑल एफएम रेनबो समस्त श्रोता मानू

सुनिश्चित मनो पसंद रहा कार्यक्रम और रेनबो एसएमएस ओनली ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे एंड आम सहित बहुत सारा लिसनर्स वर्तमान कनेक्ट है चंदी एसएमएस पेज रे व्हाट्सएप पेज रे क्या बात है सो समस्त उनको धन्यवाद थैंक यू सो मच आम सहित एसएमएस पेज रे कनेक्ट है चंदी जलील खान एंड सिमरन कटक रु सुनवा पई चाहि चंदी गैंगस्टर फिल्म रा या अली रहम वाली ए गीत ठीक सुनवा पई चाहि चंदी एंड डेडिकेट कर चंदी सब लिसनर्स मानको सब आरजे ऑफ आकाशवाणी कटक स्पेशली डेडिकेट कर आरजे स्मृति थैंक यू सो मच टुना भाईना राजेश नायक गरीब खान एंड बासंती खटुआ शहीदनगर भुवनेश्वर

सब माध्यमरे वर्तमान कंप्यूटर स्क्रीन रे एंड हम सहित कनेक्ट हे चंती व्हाट्सएप क्षमा करिवे एसएमएस पेज रे दिलीप नायक पारादीप रु कनेक्ट हे चंती खुदकर्स फिल्म र गीत सुनय पई चाहि चंदी आपके आ जाने से गीत बहुत सुंदर गीत टी तबे चलंतु एंजॉय करंतु एंड आमे मध्ये एंजॉय करिवा स्टे ट्यून्ड

ओके समय वर्तमान 10:20 बहुत सारा आपण मानकर अनुरोध रगीत तबे एठी गोटे कथा आपण मान समस्त को कहिबी जे एफएम रेनबो रे आपण मानकर अनुरोध रगीत रा कार्यक्रम बहुत थर आसीथाय मल्टीपल टाइम तो आपण माने वर्तमान जदि आपण को मनपसंद रगीत सुनी पारु नाहंती देन नेक्स्ट सोरे निहाती भापरे आपण सुनी परिबे तबे हम सहित कनेक्ट हि चंती बासंती लक्ष्मीप्रिया रोजिया लेन दिव्य चंदन विश्वरंजन स्वराज कॉलोनी मदन मोहन नगर पटिया भुवनेश्वर आम सहित कनेक्ट होती किशोर कुमार जी की आवाज में सुनना चाहते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ओ मेरे दिल के चैन ये गाना सुनना चाहते हैं एंड डेडिकेट करी चंदी सबू श्रोता सबू लिसनर्स मानंको

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को 100.4 फ्रीक्वेंसी में हम आपके पास पहुंच रहे हैं। और जो लोग फ्रीक्वेंसी के बाहर हमको सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआई या आप लाइव स्ट्रीमिंग में हमको सुन रहे हैं, उड़ीसा के बाहर से बहुत सारे श्रोताएं हमसे कनेक्ट हुए हैं व्हाट्सएप में। हमसे कनेक्ट हुए हैं दत्तरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा हमसे कनेक्ट हुए हैं। अभिमान फिल्म का गाना मीत ना मिले मन का।

0: मन का मीतना।
1: सो चली रेनबो एसएमएस आपको शुणी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटेक स्मृति रही आज सुंदर सकाल सहित दसटा सतई अलरेडी देखा आउ जे आम सहित कनेक्ट व्हाट्सएप माध्यम रे आम सहित चैतन्य चांद ईशान मंत्री प्रफुल्ल प्रधान कुआरपल आम सहित कनेक्ट लिखले जय जगन्नाथ मैम अभिनंदन नमस्कार ओके सो से सुनिबा पई चाहिचंती सपन बणिक चलचित्र गीत केते भल ए बाबू कोठु आइला ए बाबू ए गीत टिको एंड ए गीत टी से आभास बाबू एंड संयुक्ता मैम को पई से ए गीत टिको डेडिकेट करिसंती ओके सो निश्चय ए गीत टी मु सुनि दउछि आपनक डेडिकेटेड पर्सन को एंड आपनक मध्य।

ओके सो नेक्स्ट एसएमएस निहाती भावरे ने भी सुधा सड़ंगी रो उर्मिला बेहरा प्रशांत कुमार बेहरा प्रद्युम्न बेहरा सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप रे लिखले नमस्कार स्मृति अपा केमती अच्छा आज कार्यक्रम बहुत सुंदर थिला समस्त कार्यक्रम एत भल थिला कह भी होनी सब एमती कार्यक्रम आम मान भेटी दौर धन्यवाद फोन तो लगलानी तमें आसिले फोन लगवाटा बहुत कष्ट तमें जब आस फोन इन कार्यक्रम दि घंटा कर थैंक यू सो मच एत भल लगला आपण को बहुत मानते शुणी बहुत खुशी लगला एंड गीत शुणापी चाहते पूजारिणी चलचित्र गोटे गीत बौल बौ को एति कहू गीत शुणापी से अनुरोध करा आपण मनपसंद गीत

समय वर्तमान 10:35 सो चली रेनबो एसएमएस नेक्स्ट एसएमएस देखा व्हाट्सएप आम सहित कनेक्ट होती जितेन्द्र निली माधव आम सहित कनेक्ट होती शुणापी चाहते दिल है तुम्हारा फिल्म छाया है जो दिल पे वो नशा है।

बिल्कुल, मौसम भी ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों कि ये सब आपका जो पसंदीदा गाना है ना, ये सब सुनने सुन जब हम सुनते हैं तो बहुत ही और भी अच्छा लगता है. मतलब मौसम के साथ ये गाना एकदम चार चांद लग जाता है. हाँ तो वे अपन जोठी भी था तो ना कहेंगी जुआड़े भी जाओ थन तो ना कहेंगी आम सहित कनेक्ट रही था एफएम रेनबो कटक रे 100.4 दिल से दिल तक अपन साथ ही स्मृति रही सहित रेनबो एसएमएस सो रे सो आम सहित कनेक्ट होती लक्ष्मी सरस्वती शिवानी माणियाबंध बड़म्बर आम सहित कनेक्ट होती शुभ सकाल.

ओके दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। और आज की सुबह आपके साथ आपकी हम सफर होस्ट जुड़ी हुई है, स्मृति जुड़ी हुई है। और रेनबो एसएमएस शो में हमसे जुड़े हुए हैं माता मंदिर रोड कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से कुछ श्रोताएं। मानसी एंड गौरव अरोरा हमसे जुड़े हुए हैं माता मंदिर रोड कीर्ति नगर न्यू दिल्ली एरिया से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कनेक्ट हुए हैं और सुनना चाहते हैं बड़े घर की बेटी, ये फिल्म का गाना। अयोध्या घर जिसका घर हो अयोध्या जैसा, ये गाना सुनना चाहते हैं नितिन मुकेशी की आवाज में। तो चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंदीदा ये सुंदर सा गाना, ये नितिन मुकेश जी की आवाज और सुरेश वाडकर जी की आवाज में है।

ओके सो बोल राधा बोल क्या बोले यार समय सरी सरी असलेनी से तबे चलन तो आउ गोटे मेसेज मुनौचे किशोर नगर कटक रु बाबन चंद्र पाल ममता पाल आम सहित कनेक्ट होती ओडिया आलबम गीत फुले झीर आउ थे नेबी मनीष जन्म यही गीत टी शुणापी अनुरोध कर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सनी देओल का फिल्म माने फुल ऑफ एंटरटेनमेंट जोठी एक्शन अच्छी इमोशन अच्छी कॉमेडी मध्ये अच्छी आउ रोमांस मध्ये सेथि पई पिलेठारो बड समस्त थांकू पसंद करंदी।

पई वर्षा खुशी रे ऋतु तो कहा पई प्रेम तो आउ कहा पई नीरव साथी आपण जानि छथि वर्षा रे कोटे अलगा टाइप रो म्यूजिक थाए गरम चा कप धरी बालकनी रे बसी वर्षा को देखि पाहु बा छरका भांगरे बसी आकाश को देखि पाहु आउ से टाइम रे जदी रेडियो रे गीत बजतो वाओ से मोमेंट पूरा हल्का प्रकार हे दै तबे सुने दउ छी एंती गोटे सुंदर सा गाना तबे सुनथांतु आउ गीत रे ताले ताले पूरा पूरी झूमि जांतु

आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, और ये जूता। लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का

0: सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है,

ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं।

0: पूछा जाता है जी तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी तो फिर क्या था वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं जी हाँ श्रोताओ इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है तो आइए श्रोताओ आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं इन गुफाओं में शिकार सामूहिक नृत्य युद्ध पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं श्रोताओं इन चित्रों में गेरुआ लाल सफेद पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है ये रंग वनस्पति से बने हैं इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया ये वो जगह है श्रोताओं जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं तो श्रोताओं भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती श्रोताओ ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है
1: दोस्तों कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है किसने संवारी है हमारी दुनिया माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया हमें जीवन दिया है यही तो है नदी जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।